हम इस बात पर झगड़ा कर रहे हैं कि नमाज हाथ बांध कर पढ़े या हाथ खोल कर पढ़े, दुश्मन हम दोनों के हाथ काट रहा है। जब हाथ ही नहीं रहेंगे, बांधेंगे क्या, खोलोगे क्या? हम हाथ बांध कर पढ़ना चाहिए या हाथ खोल कर पढ़ना चाहिए, इस बात पे उलझे रहे, लेकिन दुश्मन ने हमारे दोनों हाथों को काट दिया। जब वो काटने पर आता है, न फिलिस्तीन के सुन्नियों को देखता है, न लेबनान के शिया को देखता है, दोनों के हाथ काट रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हमारा कॉमन गोल क्या है, हमारा बड़ा गोल क्या है, हमारा मिशन क्या है, उसकी तरफ सारे मुसलमानों को सोचना बहुत ज़रूरी है, वरना देर हो जाती है। और दूसरा जो उनवान है डी का, वो डिसेप्शन है, कभी धोखा है। कभी अक्सर सीक्रेट्स मीटिंग्स होते हैं, सामने बात अलग करते हैं और पीछे प्लानिंग अलग होती है। राउंड टेबल पर बैठकर पीस की बात होती है, राउंड टेबल पर बैठकर यूनिटी की बात होती है, लेकिन उनके जो सीक्रेट्स होते हैं, सीक्रेट्स मीटिंग होती हैं, वो अलग होती हैं। एक मुनाफिकत का, एक हिपोक्रेसी का क्लियर फेस आज हमें दुनिया हमें दिखा रही है। ये हम मुनाफिक हैं, फेस अब नज़र आता है। देखिए, एक ऊपर से बम भी बरसाए जाते हैं और फिर कहा जाता है अभी नीचे से हम पैकेज भी भेजेंगे, फूड पैकेज भी हमसे लो, बम भी हमसे लो। ये दुनिया देखिए किस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, धोखा, फरेब, मुनाफिकत। अब देख सकते हैं मुसलमानों के दरमियान तो बहुत है माशाल्लाह, मुसलमान ना पैगंबर इस्लाम के ज़माने में मुनाफिक कम थे और ना ही आज के ज़माने में मुनाफिक कम है। किसने कहा असहाब को मुनाफिक ना को, हम नहीं कहते भैया। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मुनाफिकून नाजिल करके कहता है इनके दरमियान भी मुनाफिक है। हिपोक्रेट्स उस ज़माने भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं। किस तरह धोखा दिया जा रहा है, किस तरह मुसलमान के लीडर्स किस तरह दूसरे मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, ये हमें नज़र आता है हमारी निगाहों के सामने। धोखे में आना नहीं है, बेदार करना है अपने आप को, अवेयर करना है अपने आप को, अवेयरनेस की तरफ लाना है, ताकि कहीं कोई और इंसान किसी और इंसान को धोखा ना दे। जब सीक्रेट्स मीटिंग होती हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी बड़ी सल्तनतें, बड़े बड़े किंगडम्स बाहर के दुश्मनों से तबाह नहीं हुए हैं, बल्कि अंदर के मुनाफिकों से तबाह हुए। पता नहीं, जुमले को सोचिएगा, बड़े बड़े मुल्क बाहर के दुश्मनों से तबाह नहीं हुए, वो अंदर के मुनाफिकों से तबाह हुए। और आज भी यही मुसलमानों का हाल, मुसलमान ममालिक में हाल यही है जो तारीख ने बयान किया है। इसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। जब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे D1, अपने अहम गोल से D2, धोखा देना शुरू करेंगे, फरेब देना शुरू करेंगे, हिपोक्रेसी की तरफ आएंगे, नतीजा क्या होगा? D3, डिविजन्स होंगे। D3, लोग बट जाएंगे, लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को आगे रखेंगे, दूसरों की प्रायोरिटीज़ को पीछे, दीन की प्रायोरिटीज़ को पीछे कर देंगे। वो अपनी ख्वाहिशात को आगे रखेंगे, डिज़ायर्स को, और दूसरे दीन के पैगाम को पीछे रखना शुरू करेंगे। कानून पीछे हो जाएगा, इंसान आगे हो जाएगा। अगर मेरा फ़ायदा है कानून अच्छा है, अगर मेरा फ़ायदा नहीं है तो कानून भी अच्छा नहीं होगा। जब ये बात सामने आती है तो जाहिर सी बात है डिवीज़न शुरू हो जाते हैं। आज मुसलमानों में यही हुआ, हम देख रहे हैं किस तरह कितने ट्राइब्स हैं, कितने कबीले हो गए, ये कबीले में कितने कबीले हो गए। अगर इंसान काउंट करना शुरू करे, किसी ने अच्छा जुमला का मजरत के साथ, पैगंबर इस्लाम की हदीस है कि उम्मत मुसलमानों की 73 फ़िरक़ों में 73 सेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, उस खतीब ने, नहीं, एक फ़िरका 70 फ़िरक़ों में बट चुका है, सारे मुसलमान 73 सेक्ट्स में नहीं बटेंगे, एक एक सेक्ट भी 73 सेक्ट्स में बन गया। क्यों बन गया? डिस्ट्रैक्शन की वजह से, डिसेप्शंस की वजह से, ये डिविजन्स हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए पैगाम दिया हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे उलमा ने, मराजे कराम जो आइंदा का सोचते थे, कितना खूबसूरत जुमरा कहा था शहीदुल उम्मा ने, रहबर ने, कि तमाम मुसलमान एक बेंच पर बैठे, एक टेबल पर बैठे, और बैठकर अपने एबिलिटीज़ को, अपने कैपेसिटीज़ को, अपने कैपिटल को शेयर करें। चलो ईरान के पास कुछ है, अरब कंट्रीज़ के पास कुछ है, कुछ और कंट्रीज़ के पास कुछ है, बैठे शेयर करें। हम टेक्नोलॉजी देंगे तुम इल्म दो, हम पैसा देंगे तो सहूलतें दो, आपस में शेयर करें। जब ये कॉमन इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी, अगर होती, तो आज ये मुसलमानों की हालत ना होती। कम से कम बैठकर एक इत्तेहाद का एक सर्किल

दिल बनाए, धारा बनाए। अग्री टू डिसअग्री, मुमकिन है बस चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हों, लेकिन उसके बावजूद हमें आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे बिजनेस में हम अग्री टू डिसअग्री इस फार्मूले पर अमल करते हैं, नहीं हमारे जॉब पर अग्री टू डिसअग्री, बिस्मिल्लाह। चलो दीन में भी ऐसा कर सकते हैं, यूनिटी की खातिर इंसान कुछ चीज़ों को मानते हुए चले, अगर जो उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस यूनिटी को, पैगाम को पहुंचाने के लिए, रहबर के पैगाम को पहुंचाने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू हैव आयतुल्लाह आगा महदी महदवी पूर इन बिटवीन अस इन दिस टुडेज फ्राइडेज प्रेयर। आयतुल्लाह यहां पर मौजूद हैं, आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामेनाई मुद्दज़िल्लाह अली के ख़ास रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर आए विजिटेशन के लिए, तमाम कंट्रीज़ में जाएंगे और वहाँ से लोगों की हालत को देखेंगे, और हम खुशनसीब हैं, इसलिए मेरे होंठ भी सूख रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं आप आयतुल्लाह के सामने। ही इज़ नॉट ओनली आयतुल्लाह, ही इज़ माय टीचर, ही इज़ माय गाइड इन इंडिया। इंडिया में कई साल ये एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयतुल्लाह खामेनाई इन्होंने खिदमत की है, आज हमारे दरमियान में है। ब्लेस्ड टू हैव अदर डिग्निटरीज इन टुडेज़ फ्राइडेज प्रेयर। वी प्रे फॉर देयर हेल्थी एंड लॉन्ग लाइफ इंशाल्लाह। वो इसी तरह दीन मुबीन इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि नमाज जुमा के बाद 10 मिनट आप यहीं पर तशरीफ़ रखिएगा, आगा जान कुछ देर आपसे बात करेंगे, सलाम सुनाएंगे और शुक्रिया अदा करेंगे, और ट्रांसलेशन भी होगा इंशाल्लाह। अगर आपसे गुजारिश है आप मस्जिद में तशरीफ़ रखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अजीम हस्तियों के सदक़े में, पैगंबर इस्लाम और छठे इमाम की खिदमत के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी तमाम हाजतों को पूरा करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिल मुरसलीन व शफीइल मुदनबीन नबीयन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سيدا شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: बहुत सारी हैं, मतलब एक इज्तिमाही है, खुद आसमान और ज़मीन की है। दुआ नुतबा में पढ़ते हैं कि ज़मीन और आसमान के होने का यानी सबब जो है मुत्तसिल होने का सबब है, या मतलब रहमतें। इवन ज़ियारत जामे कबीरा की तरफ जब आप देखें तो वो जो उसके अंदर फराज हैं कि जो बेहतरीन इमामत के लिए आप इसको कहें ज़ियारत जामे कबीरा कि जो है वो कायनात का आगाज़ भी आप ही से है और इख्तिताम भी आप ही से है, तो वहाँ पर ये जो वजूद है ये एक तो देखें एक वजूद से उमूम है यानी ख़ुद कायनात का, जैसे कि अल्लाह का निज़ाम है, निज़ाम इलाही है, खलीफा अल्लाह है, अल्लाह की हुज्जत है, उसकी जो एक अहमियत है उसको उससे क्या हो सकता है, उससे पूरी कायनात उसी के ज़रिए से चल रही है। अब कोई ये सवाल करे कि भाई क्या मतलब खुदा मोहताज है, क्या खुदा किसी का मोहताज नहीं है,
1: उसका सिस्टम तो है।
0: उसका सिस्टम यही है कि उसने एक ऐसे सिस्टम में बनाया है कि एक हाथी अपना हर ज़माने के अंदर रखा है। वो एक तो ये है कि फैज़ कुल्ली है, यह आसमान में और मरल खुशबू है रंग, अब चाहे इसमें कोई मुसलमान हो जो ना हो, जो मानता हो ना मानता हो, ये जितनी चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम सिचुएशन से वो इमाम के वजूद की वजह से है।
2: हाँ, यानी पहला फ़ायदा, कम से कम सबसे पहला फ़ायदा जो पूरी दुनिया के लिए है कि इमाम का वजूद हम सब के वजूद का सबब है।
0: ऐसी
2: जैसा कि इशारा वो हदीस भी है कि लौला अल-हुज्जा साखतिल अर्ज़, ये मफहूम है कि अगर जो है वो हुज्जत खुदा ज़मीन पर ना हो तो ज़मीन जो है वो अपने सारे मौजूदात को लेकर निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी सबसे पहला फ़ायदा पूरी दुनिया के लिए है कि पूरी दुनिया का वजूद इस हुज्जत इमाम, जिसे कहा हुज्जत खुदा के लिए, इमाम ज़माना के वजूद से है।
1: ये बतौर कुल्ली जो है ना कि फ़लसफ़ा इमामत की जब हम बहस करते हैं
2: जी,
1: वहाँ हम ये फैज़ जो है बतौर कुल्ली हर इमाम का, चूँकि हमारी गुफ्तगू अब हो रही थी खुद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के फैज़ में, लेकिन जो कुल्ली तौर पर है हमारे क्यों उसूल दीन में इमामत है, क्यों दिगर मकातब के असूल दीन में इमामत क्यों नहीं,
0: नहीं,
1: तो उसका जो फ़लसफ़ा है वो यही है कि इमाम को अल्लाह का एक निज़ाम ऐसे है, अल्लाह मोहताज नहीं है किसी का, लेकिन अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। जैसे एक मुनाजरा हुआ था जनाब हिशाम बिन हकम का, उस ज़माने के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब, जिन्होंने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम पर एतराज़ किया था कि ये हमारी तरह के एक बशर हैं लेकिन ये इस तरह का अकीदा रखते हैं कि हुज्जत खुदा के बगैर अल्लाह का निज़ाम जो है वो नहीं चल सकता, तो कैसे हो सकता है, एक इंसान है, एक इंसान के होने ना होने का क्या फ़र्क है। तो कितना वो खूबसूरत जुमला था जनाब हिशाम का कि मुनाजरा करके जब आए इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो आपने अपने असहाब से कहा कि ये एक मुनाजरा करके आएँ और बयान करें, शर्मा रहे थे लेकिन फिर बयान किया, फरमाया ये वही जुमले हैं जो खुदा ने सुहफ़ इब्राहिम और मूसा में बयान किए। अच्छा वो जुमला क्या था जनाब हिशाम का कि दुरुस्त है वो आम बशर की तरह एक बशर है ज़ाहरी तौर पर लेकिन वो वली खुदा है, वो इंसान कामिल है। फिर उन्होंने मिसाल दी उनके ही बदन की कि आपके बदन के जितने अज़ा हैं हर उज़्व की अपनी अहमियत है लेकिन ज़रा कल्ब की अहमियत बताइए मुझे, है तो वो भी गोश्त का एक लोथड़ा लेकिन बाकियों में हो सकता है हर एक के बगैर इस बदन का गुजारा हो जाए लेकिन कल्ब के बगैर पूरा बदन सालिम हो। तो उस मुफ्ती साहब से उन्होंने कहा कि क्यों कल्ब को ये अहमियत हासिल है, उसने कहा ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, उसने सारे सिस्टम जो हैं इंसानी जिस्म के वो कल्ब से जोड़ दिए। उन्होंने कहा वही अल्लाह जो एक छोटी सी कायनात जो जिस्म है उसमें खुदा एक महवर करार देता है, एक मरकज़ी नुक्ता, एक नज़म पैदा करने के लिए उसने पूरी इतनी बड़ी कायनात में भी एक शख्सियत को इसी तरह महवर करार दिया,
0: कल्ब कायनात।
1: तो इसलिए हम कहते हैं कि इमाम महवर हैं, कल्ब हैं कायनात के, एक निज़ाम तख्लीक हो, निज़ाम रिज़्क हो, यही शब और रोज़ की गर्दिश है जिस तरह आगा भी फरमा रहे थे, ये सारा कुछ इसी लिए है कि ज़मीन पर हुज्जत खुदा यानी खलीफा खुदा मौजूद है, सिलसिला हिदायत चल रहा है। अब कोई रुजू करे ना करे वो कलैदा बहस है, निज़ाम मौजूद है, अब उसमें चंद लोग भी रुजू करें तो वो बाकियों के लिए काफ़ी हो जाते हैं, उनकी वजह से बाकी लोग भी, जैसे बाज़ अभी आगा ने भी इशारा किया, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि भाई वो तो आप ही मानते हैं बाकी तो नहीं मानते, तो वो तो अल्लाह को भी थोड़े ही लोग मानते हैं, बाकी दुनिया नहीं मान रही तो खुदा ने रिस्क बंद कर दिया है, खुदा ने निज़ाम तख्लीक बंद कर दिया, वो जो थोड़े मान रहे हैं उन्हीं की वजह से बाकी भी
0: चल रहा है,
1: क्यों, क्योंकि निज़ाम में हिदायत बाकी है, कोई भी किसी वक्त इसकी तरफ रजू कर सकता है, रास्ते खुले हुए हैं। लिहाजा पहला जो फ़लसफ़ा इस जहाँ के लिए इस वक्त भी इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़माना गैबत में, जिस तरह आपने इशारा फरमाया और आगा ने भी, कि जो सवाल हुआ था मौला से کہ ہم غیبت میں آپ سے کیسے فیض لیں گے, تو یہ انہی کا ہی فرمان ہے.

0: आएगा, होगा, नाम होगा, ये कंडीशंस हैं। मुसलमानों के अंदर ज़ाहिर है तशय्यो और अहले सुन्नत अरे एक दो तफक्कुर जो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें उसके अंदर, लेकिन उनके सब फिरकों के अंदर बहस यही है कि पैदा होंगे यानी फिर होगा। अच्छा, वो इसी इंतज़ार में है कि पैदा होंगे। अब बड़ी लॉजिकल सी बात है कि जब ज़हूर होना है पैदा होकर ही होना है, बगैर पैदा हुए तो कोई भी ज़हूर नहीं करेगा। अब हमारे मकतब के हिसाब से इमाम 1100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पैदा हुए, उनके यहाँ अब उनके यहाँ ये डिफ़ाइन नहीं है कि कब होंगे, लेकिन होंगे। अब क्योंकि जब डिफ़ाइन नहीं है तो वो जो सिंक्रोनाइजेशन अटैचमेंट की जो आप कैसे ना एक अंदर होती है वो ऑफ है।
1: हाँ,
0: अब शिये के क्या तशय्यो के क्या, क्यों इमाम जिंदा है, इमाम जिंदा है गैबत में। अब ये बहुत फ़र्क पड़ता है जिसका इमाम जिंदा हो और जिसके हाँ यानी इमाम हो लेकिन उनकी आइडियोलॉजी के अंदर अभी इमाम नहीं है, तो बहुत फ़र्क है। तशय्यो अपने एतकाद, अपने अकीदे, अपने होप, और आज दुनिया के अंदर जो सर अफराजी का परचम जो बुलंद है तौहीद का, वो किस वजह से, तशय्यो के पास है। क्यों? क्योंकि साहिब जिंदा है। और कितने रिवायात और वाक़यात इस बात पे मिलते हैं उलमाए कराम की ज़िंदगी, जो अक्सर हम गुफ्तगू करते हैं, ख़ासतौर पर सैयद अबुल इस्फ़ानी का वाक़या
1: जी,
0: वो शुरू में आए, वो गांव देहात से और मदरसे में पढ़ते थे और मुश्किलात, और ये उनके वाले साहब ने बोला कुछ भी क्या है ज़िंदगी, वापस चलो, तो उसमें ख़ुद इमाम का आना और इमाम का चीज़ों का मुहैया करना और इमाम का उनसे कहना कि अपने वाले साहब से ये कहना कि से कहो कि माँ साहिब दारीम यानी साहिब हमारा ज़िंदा है। अब ये बहुत बड़ा है, ये मतलब आप खुद आपकी अपनी एक, मैं अपनी शख्सी जाती जा रहा तजुर्बा कि जब इंसान को ये पता हो कि उसका इमाम है, इमाम जिंदा है, इमाम देखता है, इमाम तक अमाल पहुंचते हैं, तो कितना इंसान अपने आप को फिर उसके अंदर वो बाकी रीज आप कह लें कि सब टॉपिक्स जो हैं वो फिर उसके अंदर आना शुरू हो जाएंगे कि जो इंशाल्लाह आगे, लेकिन मेन यही है एतकाद, अकीदा, और ज़ाहिर है बग़ैर अकीदे के इंसान का अमल का कबूल ना होना और ये सारी चीज़। बहरहाल साहब मज़ीद बेहतर जो है
1: इस सिलसिले से अगर कोई और बात को अगर मुकम्मल करना चाहें आगा की तो बयान करें, अगर नहीं तो फिर दूसरे सवाल की तरफ हम चलना चाहेंगे।
2: असल में यही मैं उसे इस तरह मुकम्मल करूँगा कि वहाँ से तो कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो हमारी अपनी है कि हम जिस तरह मार्फत रखनी चाहिए ज़माने के इमाम की, चूँकि वैसी मार्फत नहीं होती, तो बावजूद इसके कि हम बहुत कुछ ले रहे होते हैं मुतवज्जे नहीं होते चूँकि मार्फत नहीं है। वरना अगर हमें इमाम वक्त की मार्फत हो तो फिर हमें ख़ुद ब खुद ये सारी चीज़ें वाज़ और रोशन नज़र आएंगी कि मैं तो एक लहजा भी उनके बग़ैर नहीं हूँ, और फिर उसे अपनी ज़िंदगी के वो सारे गोशे रोशन होते नज़र आएंगे कि जहाँ वो बराह रास्त इमाम का फैज़ अपने ऊपर देखेगा कि हाँ फ़लाँ मोरद में, चूँकि देखे ना एक हदायत ज़ाहरी है और एक हदायत बातनी है। अब हम अगर तकवीनियात की बहस से निकल आए हैं, मसलन हम निज़ाम की, तख्लीक की, रिज़्क की, शब रोज़ की, गर्दश की, इस सारी बहस से निकल आएँ और मद्द मुकाबल उम्मत तशय्यो को सामने रखें, तो उम्मत तशय्यो की बका जो है वो इमाम की वजह से है। खुद तौकीए मुबारक है उनकी कि इन्ना गैर मुहमिलीन ले मुरातकुम, इमाम जो है हाँ इमाम जमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने अगरचे गायब हूँ लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे हाल पे नहीं छोड़ा। वला नासीन अले ज़िक्रकुम, तुम में से हर एक एक शख्स को मैं याद रखे हुए हूँ। ये बड़ा अहम नुक्ता है। अब देखे ना इसकी तरफ तवज्जो करने से खुद कितने ही जहन जो हैं वो रोशन हो जाते हैं, यानी इंसान महसूस करता है कि वो खला जो है वो इसकी तरफ से था, इमाम की तरफ से तो नहीं है। कहते हैं रहमत इलाही तो हमेशा बरस रही होती है, ज़र्फ हैं वो जगह हैं कि जो इस काबिल होती हैं या नहीं होती कि उससे कुछ लें या ना लें। तो अब इसलिए आप देखें कि ये जो इमाम के दूसरे नायब हैं गैबत सुगरा में जनाब मोहम्मद इबन उस्मान अमरी रहमतुल्ला, ये उनका जुमला है कि हज के दौरान इमाम हैं वो भी मौजूद होते हैं मक्का में, मिना में, अरफात में। जी। अब ये रिवायत जो है अब नायब दोवम की है, कहते हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तमाम हाजी जो हैं, अब उसमें शिया और गैर शिया की बात नहीं है, तमाम से मिलते हैं, सब को देखते हैं और वो सब को नाम और नसब के साथ जानते हैं, वो भी देखते हैं, ये सलाम करते हैं, वो भी जवाब देते हैं। फ़र्क क्या है کہ امام تو پہچانتے ہیں سب کو لیکن وہ ابھی انہیں نہیں پہچانتے.